0: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। नमस्ते जोशी जी, हेम केम छो ने?
1: रात बड़ी गई छे पण
0: मैं शू छे, आ रेडियो एवं छे ने कि एक वक्त जो जामी गया ने तो एम ज लागे कि हवे गुरुवार क्यारे आवे। साची वात छे कि नहीं, है ने? आप सांभ्या छो गीत माला। हाँ, तमारी फरमाइश मैं जोई लीधी, कई जोए छे, पूरी कोशिश करशू। आप सांभ्या छो गीत माला 102.8 एफएम उपर या तो www.divasfm.com उपर। राठौर परिवार, मने आशा छे के तमने आ खूब ज गमी होशे। हाँ, बीजा पण होई तो पण जराय चिंता नहीं करता, व्हाट्सअप करो ने 07568686863। तमे सांभळो अने बीजाने संभळावो।

श्रोता मित्रों, आप समरिया चो गुजराती कार्यक्रम गीतमाला गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समक्ष रजूआत करवानी पूरी कोशिश करीए छे। रातना 8-10 कलाके छोकरो जारे सूतू ना होय त्यारे बधाय केटलाय हाळेला गाय हे बराबर ने उल्लू उल्लू सुई जा। पण एक गीत एवं है मन उदास नू

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौगुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपनी समक्ष रजूआत करने पूरी कोशिश करे छे रात ना 8-10 कलाके। श्रोता मित्रों, ये तो केतात भूली गयो ने, अटपट ओखाणू बाकी रही गयू छे। गए अठवाडिया थी त्रण अक्षर नु मारू नाम सौथी ऊंचू छे मारू मान। मध्य जाय तो पाड़ी बनू, प्रथम जाओ तो बनू पड़। आ छे अटपट ओखाणो। स्टूडियो नो व्हाट्सएप नंबर छे 0756686863। तमे संभळो अने બીજાને સંભળાવો ગીતમાલા।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पर भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है, जब देखो भूखती रहती हो मुझे। तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौक जाते कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपने समक्ष रजूआत कराने पूरी कोशिश करे छे। रात ना 8-10 कलाके फक्त 2 कलाक, पण तमने एम लागे के तमे गुजरात ना कुणे कुणे पहुंची गया होय के पछी इंडिया ना कोई पण भागमां के दुनिया ना कोई पण भागमां, हं अफ्रिका छो के यूरोप मां छो के पछी અહીંયા છો, બધાય જોડે મળીને સાંભળીએ મેડલી। સમય પણ જાતો જાય છે અને સમય થોડો છે બાકી, તો સાંભળી લઈએ થોડા અટપટા ગીતો।

श्रोता मित्रों, आप सम रिया तक उजाजे कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे अपनी समक्ष रजूआत करवानी पूरी कोशिश करे छे। आ तो गुरुवारे फरी पाछा आपणे मुलाकात करशुं। त्यां सुधी शुभ रात्रि कहेवा रह्यो छो। बाय बाय। हेम केम रहेजो, सावधान रहेजो, ज्यां पण जाता होय सावधान रहेजो अने स्केमर्स थी दूर रहेजो प्लीज। तमने खबर काही ना होय तो सीधा बैंक नो फोन आवे, कोई दिवस बैंक वाला तमने फोन नहीं करे। पुलिस नो आवे, कोई दिवस तमने फोन नहीं करे। ए रूबरू आवे तो एने कहो आईडी आपो अने लेटर बॉक्स में लेवानो ओके आईडी, પછી પોલીસ સ્ટેશને ફોન કરવાનો 101 ઉપર। આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાલા। આવતો ગુરુવારે ફરી પાછા મળશું। હેમ કેમ રહેજો, શુભરાત્રિ કુવારી આવજો। બાય બાય, હેપી જન્માષ્ટમી બધાને અને શુભરાત્રિ।